0: जीवन, सब मेरी गलती है। मैंने ही अप्पा को कहा था कि ऐसा गेम बनाओ जिसमें विलेन कभी नहीं हारता। अगर उस दिन हम रावण को हरा देते तो आज अप्पा यहाँ होते। You're a dude, Dad.
1: You're a dude, Dad. इसमें तो कोई न्यूट्रिशनल एलिमेंट है ही नहीं।
0: नो स्मोकिंग, बैड फॉर हेल्थ, पैकेट पे भी लिखा है।
1: पता है हर साल 1000 लोग सिगरेट पीना छोड़ देते हैं।
0: वाओ, पैकेट पे वार्निंग पढ़ के?
1: नो,